0: सुन्न काली, आज राति हामी भाग्न पर्छ है।
1: आमाले चाहिँ मन मारिहाल्छिन् नि फेरि।
0: रातिको 2 बजी तिम्रो आमाले कहाँ देख्छिन् त भने।
1: आइनाउ